0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

तेजस्विनामधीरमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वन्दे दक्षिणकैलासम् वन्दे हेमाद्रिनीमपि वन्दे वेणुवनेश्वर वन्दे श्री